0: Zuta ya tichi, hu on sit a Philip Husky, hu good dit a woods a quahunt eh.
1: Did check eh, a besakun gets on da Philly Husky hit at Niha good do out at Philly, do well lay it a yed, sat yet on, doing it at way in ho, had it a quit. Isla sakalan yelindi, a quit at a ye on da Philly Husky hit at Gogat Sadia. That's in that day, lady. Don't want a hand one eat, sonny, a good, a ye good dee, he went on dinner that. Tear that ye cared not, this old aunt, you know.
2: They get on the get away. It can't pay dear cousin, dear day, he has done it. That's how I get tossed away. And that he at playing care, sat here about your cousin, ye lady. I call Lazia Rathan, a lost hat. Somebody is not found there. Then there's an issue at the lake. I won't have the idea. He didn't say, say it. And I see Daisy, your natural video, that they lend the skin of home. That's the only thing I'll pay the other kids. Get daddy today. I call you daddy, you shot. And I could do something like daddy.
3: I was a little bit of a Bien da jile aye da jige sida jorna jwo khya chi a chi la ha si bia ha ni le dia ha ni da go wo ni di kinse di da chi ya ze da kha da ha ha sha na kha ye sha ni le chi do wa ji tsa la ga da zun sa ge da a su na kha na ye sha ni le an da kha ha di Each a card is never to get done it. I get another get to the degree get done as you get done a family there. A shed in the dear. Let's say kindly, they give a card, say kindly, or a little man in it. And if you want daddy, he did, he's done it. Sin our father is not a good dirty down our car. Set up, my own day is a pretty day. A da. As you had Zonik and Nakanianida, I forgot the Sabin Zah. Yes, and I got seen Nakanianida, and I sit down with Adela. As you had Zadi, and that's so it's Yanikotama Zaida Nakala has me 200 taikes. Then I came with Kaylin Sada, Sida Ko, which I knew in the reef, rather, go cried out if you die. Ah, that's all. Needling it. It begged me as a national oak one. That's Sazer and the little Tommy, no one. Lisa Kane, it's so great as I get a crap, and I shall as a red jelly. And I is it. Narrated and narrated.
2: And
3: ताई का शिवा लड़ा ये नहीं ये ये तेरा चला है का ना चला है
1: हाँ
3: दाये कोई आता ये जो क्या सुन ताई क्या सीधा सीधी ना आ से दे ले वो से ना वो से तो हाँ ना ये से क्या ये तो ना रोटा का चीन ना रोटे ये तो ये दाजी का चीन ना चल ना इतना से जा da tike je ho wi no get sa ge da po da go ho da i se un cha de da sin da ra ka ye ze ge da che to ye ta ka cho da go ho ne sha na da ge an ye di da ti na re te da ye zo de lu na fi cha ye zo no wa la le da ti da ne din le ye wo ye ta o da na go ho se kru na ka a se za wa za हाथी हाथी दस ये देखो जा रहा बोल दस खा दे सौ सौ जेवा आगे दिला दी है से खाजना से ना
1: हाँ
3: आप कौन है जिन्हें पहचान रहे हो ना जैसे कि ये इंसान आज वो ये ना कि दिल्ली को ये ना कि दिया नहीं तो ना ये तो कि ना से शुरू तो वो चीज़ तो नहीं
1: है
3: हाँ आज वो चीज़ है तो ना तो ये ना रोटे ये तो ना सुनते हैं दिल्ली में तो सुन रहे हैं तीन तो लोग सुन रहे हैं ना तो ना Asino wana ka koni. E yi dwen se, a ye de se dwen son a ye de ne, ta se ve je tingi je dan le le. Se ye wa se an da tingan, kin ta o je da yi zo.
1: Ha.
3: Ye zon, e da ye ha ye san ka wo se, yi ha ya sa za, ki de se na, zin wo wo ka, ki tingi na kya, da yi se wa da yi kone, ta yi se an da, ko da si woni se de e chi ha da ne se wo le da ko ko zu ye de e chi ro chi ko no e chi ko ha ne yin da zu no wi ye da ku ye wo ha de le da ko ho le ye zu sa su de wo ye da je ye ra chi ne de de ko ko e ko na ka si ha de ze de wo ha sa da ko ye ko ni a ne ga ta दागे दाज ये रहे ये पूरा कोई नहीं था दाहा नहीं था ये जान था ही आज मैं एक वैसे जाने देखी को क्यों एक वो जा किस आज में तादा में भी ये तो जा था कि भी जो तान लो तरह की है हाँ हाँ ले जो कि ये ता कहना साला कहता वैसे ये शेर ये जंदाली तीजे के तान है ना हाँ नहीं दागे से वाला इधर नहीं थे हाँ नहीं तो तो ताकि वो तो दूसरा सुई से ले जाएगी सी डाली हाँ नहीं मशीन फोन दे दी है ऐसा थोड़ा था से हुए नहीं हाँ नहीं जो मशीन फोन दे तो ऐसे ना कि ना सिगर दिया हाँ नहीं या मज़ाक दिया हाँ नहीं हाथ वो वो दिया हाँ नहीं यार जो वो क्या है ना मैं सेती ये किताब सीख रहे दुनाली अंदर ये इतना कौन सा था ये कौन सा था ना शिवों से तो होता है ना शेज़ाल ना जाने कौन शेज़ाल ड्राम होता है शिवों ने तो जीत लिया ने अगर नहीं दिन अगर नहीं लेंगे तो दिवस तो नहीं हुआ ने मस्सिया की ना देखो
1: मस्सिला बस खुद से अंदर फिलहाल की नहीं है कि दू अधिक